0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
1: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: तड़ाई मासे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखे ना पर शापर के हमें एश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखे

बिल्कुल अर्जिंग प्रोग्राम से कलरों से बना रहूं दी पसीरो 331 बोन पेंसर 340 बने सुमरहा लिसनर दी अर्जिंग दी प्रोग्राम से काल काल होड़े बताना मारदा ये बड़े नंबर बने

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο είχε πάντα σαπάρ, σε δετά σε έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πας σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρταρ, έχω χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρταρ, μάρα είμαι ζητή, μου έχω κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βαρύβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε δασταράγγε σαρά προβρέ.
1: Δελκολ τα ρεχανά, τα γιλεύε χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοράλ σε ρικρέτη, ωστόλ κούρβαλα να χωασούλτη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब्रो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তে মিলাবিজি।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το ούγε γέζει και δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τα ρεχανά, πας απάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με ζητή μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δαστεραγγε σαρα προβρή.
1: Δελκόλ τα ρεχανά, τα γιλέ βε χάρβα τε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दाग दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दोनों सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नहर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दाव बने गलसे अंदरून लाकी गेट जानसे बेगाले पर शेमार किसे